हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारू

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अमाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-763।
3: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वधीक अकेलाए जो शिकार थी वेंदो। फोन ते ॻाल्हि दौरान ट्रंप नेतन्याहू खे नाशुक्रो करार ॾींदे चयो त आउं तुंहिंजे खिल बचाए रहियो आहियां, आउं न हुजा त करप्शन केस में जेल में हुजे। लेबनान ते इसराइली हमलनि बाद ईरान अमरीका सां आमून ॻाल्हियूं रोके छॾियूं। नेतन्याहू जी बेरूत ते हमलनि जी धमकी बाद ईरानी फ़ौज बि उत्तर इसराइल जे शहरनि खे इलाइक़ा ख़ाली करण जी वार्निंग ॾेई छॾी। पासदारनि ऐं इनकलाब चयो त बेरूत ते हमला थिया त इसराइली नुक़सान खां बचण लाइ उतरियां इलाइक़ा ख़ाली करे हलिया वञनि। ईरानी मीडिया मूजिबि इसराइल जा लेबनान ते हमला जारी रहिया त अमरीका ऐं इसराइल विच में जारी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां मुआहिदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तेहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगाम जी मुअतली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदी में वाधो थींदी ऐं अपने हरमूज में बि बहरी ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरकरार।

इसराइल लबनान ते हमला बंद न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। ईरानी फौज जवाब ॾियण जे लाइ मुकमल तौर ते तयार आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरानी फौज धमकी नाहे ॾींदी, फैसलनि ते अमल कंदी आहे। खिते में मौजूद अमेरिकी फौज बि नतीजा भोगींदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलन फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88
2: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

से पता करते हैं लोगों के दिलों को, शाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ट्यूनिंग इन टू जियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप कि जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आकर मेरा साथ रहता है, आज भी रहेगा। प्रोग्राम में वक्त की बात की जाए तो 11:23 पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा होगा, नहीं बज रहा तो बजा लें, अपनी घड़ी की सुइयों को दुरुस्त कर लें। इसके अलावा

इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अलर्ट द नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बवजह खुदा खैरियत मौजूदा और तवक्कुल खुदा खैर।

कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सैटरडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए. जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगेजी आयानु, सर बिस्मिल्लाह. And welcome into जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो ग्यामत से करना चाहते हैं, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. इस गाने के साथ ही हम चलेंगे आगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बे का सीनियर लेक्चरर।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और ये कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अब प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: FM बदलती लाइफ
1: ट्रेजेडी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे खेल महा से और बेजानपन अब सबको कहे अलविदा।

0: का बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जल्द को दे नया निखार। नरमी, ताजगी और कुदरती चमक, सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि
1: डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बीएस केमिस्ट्री बीएस बायोटेक्नोलॉजी बीएस एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज बीएड 4 साला एमएस एज Education Basala. Mustahik Shagirdyan lai scholarships bhi maujood. Eligibility and deadline. Ghat me ghat 50 crore marku intermediate lazmi. Mirzi had 35 saal. Form jama karane ji aakhri tarikh 5 June 2026 tai batai gaya hai. Lehaza der na kareo. Online apply kareo. www.apy.bnbwu.edu.pk गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो पिया हाने परेशान थियण की जरूरत ना है पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटी मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी सुकून आई हकीकी राहत दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण गर्मी के असर के घटाएं आई जिस्म के तवानाई देण लाए शरबत रूहे राहत रोजानो सिर्फ 1 गिलास आई महसूस करो थकावट का आजादी कीमत सिर्फ 450 रुपया शरबत रूहे राहत मिलन जो हंध मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर खमीस आई जुमो मिलन जो हंध मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नस्त लाला शहजादा चौक रोहड़ी राप्तो 0302 36 26 176

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. सुर लगा गाना सुनाओ जिसमें हम लेने जा रहे हैं आप लोगों की एक और कॉल. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं यहाँ से?
1: हाफिज
0: सावल भाई. कैसे? ठीक ठाक, परफेक्ट है
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: जी मैं ठीक ठाक हूँ. मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी.
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी जी.
0: तो सुनाए. हाँ जी.
1: तो
0: तू जो सिंगार ठरा, ये गाने का नाम है? ओके. तो सा
1: मेरे दोस्त है.
0: हाँ जी. ये मैं सर्च कर रही हूँ. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. 03000. ये वाला गाना मैं देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ और शायद मुझे मिल जाए.

0: ओके जी, कॉल कॉलर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट. चेक करेंगे कौन कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से. ओके, गाना सुनाएंगे.
1: फरजानाबाद का गाना है, लगी प्यार दिल का दिल तो महबूब गली माना करमा. ये गाना सुना आप. नहीं सुनाती हो मेरा गाना.
0: अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं.
1: आपकी मेहरबानी. आप अपना ख्याल रखो. सुधर.
0: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे.
1: नहीं देखो यार, पंतानवे वाली ब्रेक का ना हुआ नवस्तो.
0: चले जी, थैंक यू सो मच. और ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट गुजारा करेंगे. हाँ

गाना प्ले कर चुकी हूँ, साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी. काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी. ठीक है, ये कहना है काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी. छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड.

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वादो थियण जे लाइ पुर में तेहरान सां ॻाल्हाइण जो सिलसिलो जारी रखी ॿुधायो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगामनि जी मुख़्तलिफ़ ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नतन्याहू हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदी ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदी में वाधि थींदी ऐं अब्दा हरबूद में बि पहिरीं ट्रैफिक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरकरार।

0: ओ पत्थरन।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM ATH Network
3: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: 3107
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है 5 जून 2026 ताई वधाई वैया है। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी है मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई फिजिक्स, रियाजी, आई शुमारिया जेड़ा अहम प्रोग्राम, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS chemistry, BS biotechnology, BS environmental science, English Islamic studies, B.Ed 4 sala, MS education 2 sala, mustahiq shagirdyan lai scholarships bhi maujood, eligibility and deadline, ghat mein ghat 50% mark ho intermediate lazmi, umr ki had 35 saal, form jama karane ki aakhri tareekh 5 june 2026 tai batayi gayi hai, lihaza der na kareo, online apply kareo, www.apy.bnbw.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो प्या, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी, सुकून आई हकीकी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी के असर के घटाण, आई जिस्म के तवाने देण लाए शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ एक गिलास आई महसूस करो थकावट का आजादी, कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस आई जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड नस्त लाला शहजादा चौक रोहड़ी। राब्तो 0302-3624-176। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक,
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
2: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।

कीजिए वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, एक बजने में बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है. लास्ट लकी कॉलर भी लेते हैं और चेक करते हैं लास्ट में कौन हमारे साथ मौजूद है और हमारी कॉल हो गई है हैंग. खैर कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि आज का जो टंग ट्विस्टर है वो किसने ज्यादा अच्छा अच्छा और सही सही बोला है. सो दैट आज का जो टंग ट्विस्टर है वो बोला है, एक तो मिसेस अली ने बोला है और दूसरा जो टंग ट्विस्टर बोला है ना वो बोला है सागर भाई ने. तो इन दोनों ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है. मिसेस अली ने बहुत स्पीड में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोला है और इसके अलावा जी सागर भाई ने शुरू में टंग ट्विस्टर को कह के दिखाया है और क्या कमाल का टंग ट्विस्टर उन्होंने बोला है. तो इसी बात पे गाना भी होगा और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक लास्ट एंड लकी कॉलर ले लूँ

अब मुझे जाना पड़ेगा और लास्ट में हम प्ले करेंगे इमरान खान की आवाज को और इसी के साथ फाइनली आपसे लेंगे इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपसे दोबारा चिटचैट होगी 7 से लेकर 8 बजे तक, 1 घंटा नॉन स्टॉप. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन्स आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वाइदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली थी ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं अबना हरमूज़ में बि पहिरीं ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। हुते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार।

सख्त मतलब ते हमला फौरी तौर रोकने जो मुतालबो गलन कौन में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार है तो पाकिस्तान लबनान से इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत करे तो इसराइली हमला आलमी कानून की भनकड़ी है जटादार अमन रुगबान वसीले मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत अवाम से यकजहती जो इजहार करे तो पाकिस्तान शिकरतार के खात्मे लाए सफारती कोशिशों जारी रखो।

सत्य सुञाणप नथी सघी। पुलिस लाश अस्पताल बंदगी करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं संदसि ॿार जा थी सघनि था, जेके राति जो देर सां ट्रेन मां किरी फोत थिया हुजनि। वधीक जांच करे रहिया आहियो। बाबरा जी इम्कानी निजकारी ख़िलाफ़ मुलाज़मनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। बाबरा मुलाज़मनि कैरपुर, सखर, सेवन, दादू, टंडो आदम, परीदन, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया। बाबरा जी निजकारी वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। बाबरा मुलाज़मनि चयो त इदारो खांगाइण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। हल्के में बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा, ट्रैफिक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। शहरनि फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाज करे महिराण हाईवे जे

0: नसीराबाद वेझो ॻोठ खलाई करोड़ा ॿाहिरां ज़रई ज़मीन तां पीसण जो तशद थियल लाश थे ॻोठ मिठल चांडियो वासी पीसन मोहम्मद परियल चांडियो जो तशद थियल लाश मिलियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त संगवती तकरार तां बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीसन खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। जिस धरती से जुड़ा है

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाँ अवजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। मशवरे रबते 0327 99।

रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर कलाम आप सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रही हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग, तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम कहा जाता है। और आज के प्रोग्राम के जरा टॉपिक की जाने बात है, तो आज का जो मेरा टॉपिक आप लोगों से होने वाला है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ऐसे, क्योंकि ये सीन जो मैं सोच रही हूँ ये कभी ना कभी तो हमारी जिंदगी में लाजमी हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत मरतबा हो चुका है, लेकिन आप जरा आज अपनी बताएंगे कि आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने ऐसा है कि अपने घर एंटर होते वक्त हीरो वाली एंट्री मारी हो, हीरोइन वाली एंट्री मारी हो, आपको ये लगता हो कि भाई मैंने तो बड़ी अच्छी वाली एंट्री मारी है, लेकिन ऐसे साथ ही सामने आपके जो है ना आपके घर में मेहमान बैठे और आप जरा शकी थी आए हो तो वहां अक्सर ये थींदो आहे जॾहिं घर में एंट्री मारी ना आयो ऐं असांखे लॻंदो आहे त असां दिलि में सोचींदा त असां हीरो वारी एंट्री मारी आहे, पर सामने जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त महिमान वेठा हूंदा आहिनि ऐं पोइ असां थोरो लॾी थींदा आहियूं। ईअं कई मरतबा मूंसां त थी चुको आहे, तव्हां अॼु मूंखे ॿुधायो त तव्हां सां ईअं थियो आहे या सिर्फ़ु मूंसां ईअं थियो आहे, पर मूंखे लॻंदो आहे त जेके जेके चीज़ूं मूंसां थियूं आहिनि उहे चीज़ूं तव्हां सां बि लाज़मी थियूं आहिनि। सो मूंखे ॿुधाईंदा अगरि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया पहिली मरतबा रोज़ाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स, यानी कि चोरी चोरी चुके चुके सुनने वाले लिसनर्स, जनाब क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल का राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे इलाके पास देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8881 पर। तो जल्दी कीजिए जी मैसेज भेजिए। उसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है। और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को आपने क्या करना है, पेज को आपने फॉलो कर लेना है, पेज को आपने जैसे ही ऑन करना है ओपन करेंगे तो आप लोगों को हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। जब भी आप पोस्ट को जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा मजा आता है, उतने ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाती है। तो जितना ज्यादा हो सके हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। दोस्तों को भी मेंशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए। और साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप तेश में आ चुके हैं, घर आए हैं, आपने हीरो वाली एंट्री मारी है, दरवाजा खोला है और आपके सामने मेहमान बैठे हैं और आप थोड़ा एम्बैरेस फील कर चुके हैं, भाई ये मैंने क्या कर दिया तो मुझे बताइए जल्दी से कि ये क्या आपके साथ भी हुआ है, कभी हुआ तो होगा मुझे ये लग रहा है। तो जल्दी से बताइए जी प्रोग्राम कैसे बनते जाइए। और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और उसके लिए आप डायल करेंगे 03157990595, तो 03157990595 ये नंबर आप डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए। जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, क्योंकि खूबसूरत होना और हसीन दिखना ये आप डिजर्व करते हैं। ओके जो असा गडोगर तमाजा मैसेज आहन आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, बताएं आदिल आप कैसे हैं। लिखते हैं कि पांचे खिलाफ गालियों खामोशी सा बुधो, जवाब देण वक्त ते छडे दियो, वक्त एक बेहतरीन इंतकाम मजो नालो आहे। बिल्कुल जी हकीकत आहे। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान आपको वेलकम करते हैं। और रमेश कुमार कोहली हमारे साथ थरपारकर से, भाईजान हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। और आदिल कहते हैं कि हर तवज्जा देने वाला शख्स इग्नोर करने में माहिर होता है, कोशिश करें जब कोई आपको तवज्जा दे तो उसे हजम करें, वरना अगर नौबत इग्नोर करने की आए तो आपको अपनी मौजूदगी पर भी शक होने लगेगा। याद है हकीकत बिल्कुल। और हिदायतुल्लाह अहमद आनी लगते हैं, सलाम कैसी हो सिद्रा, आज शादी है और पता नहीं, अच्छा अभी तक ये ड्रामा चल रहा है मुझे लगा खत्म हो गया होगा। चलें जी आप एंजॉय कीजिएगा शादी। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आपने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और हीरो के बजाय वो जो ना दूसरे लड़के को मिल गई थी, और हमने बेचारे हीरो के नाम जो ना वो गाना डेडिकेट कर दिया था कि हीरो भाई की शादी हो रही है। आज पता नहीं किसकी किसके साथ शादी होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ हम गाना चला देंगे, रेंडमली गाना लगाएंगे, वो बस किसी को भी डेडिकेट जाएगा। और अली अकबर बरोई भाई हमें सुन रहे हैं,

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-786-343 and 0315-450-1092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सांवली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-786-343 and 0315-4।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

होगा। तीर है खुबा अफसोस की बात बात पीछे से है ठोका। कर ले तू कैश, तुझे चाहिए सिर्फ कैश। अब बोले जो भी बोले, तुझे लेना नहीं बैक। हाँ

इलाज डॉक्टर कंदो, शफा अल्लाह जी ज़ात ॾींदी। सकरनि जो मशहूरु मारू होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहब वापस आहिनि। डॉक्टर साहब माहिर अमराज, नक कन गलो, पुराणो नज़लो निचू, जोड़न जो सूर, मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, तिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। गुर्दे जी इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश फुरड़ियो, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि थोरे औरतनि में वज़न जो न वधणु, इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी किरिया, नवाब स्टेशन रोड, सकरन में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जीअं समय सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं स्टेशन रोड, नवाबशाह मोड़ जे भरिसां मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो सुबुह 9 खां मंझंदि 12 वॻे ताईं ऐं आम ॾींहनि ते सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि। सामिन, डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर 0327-9984-7063, 2-2-2-7-8-9-8-4-7-6-3 इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे। इन ते तव्हां कॉल करे डॉक्टर साहब खां लाइव सवाल पुछी सघंदा आहियो। जीअं समय इहो डॉक्टर साहब जो नंबर तव्हां पाण वटि नोट करे रखंदा ऐं इन ते तव्हां डॉक्टर साहब सां राब्तो करे सघो था।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: मैं तो समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा।
3: आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने।
2: बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास। एक एटम बॉम कायदे आवाम जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी।
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद जो वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब तक पहुंचो है। बदकिस्मती से हुक्मरान BISPA के खत्म करण चाहन था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खिलाफ साजिशू नाकाम थन्द अस BISPA के बचाईंदी। बजट में वजीर आजम का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंड्स में भी वाधा कराइंदी। इसकर्दू में चूंड जलसे के खिताब करने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है अड़े ही आइनी तरमीम वारा अख्तियार गिलगित बल्तिस्तान के भी मिलंदा तो मसला हल थी वेंदा। अमीर के वधीक अमीर करण वाली कड़ी मुआशी पॉलिसी है। गिलगित बल्तिस्तान के वसीलन से इतान के अवाम जो हक है जैसे तस्लीम करण पव। गिलगित बल्तिस्तान वासन के वोट जरिए अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन हुकूमत जो फैसलो करण पव। ईरान से गड समूरी दुनिया जंग जो बार बर्दाश्त कर रो है। दुआ है तो फील्ड मार्शल जो जंग खत्म कराने वाली कोशिशों कामयाब थे।
5: आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया? कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई? हमने। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे जमाने में था आज भी वही है। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे, जैसे खरदू जाते हैं कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूंगा, वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा।
4: गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कम छो नाहन थे। 2015 ईस्वी में 100 अरब डॉलर देने बावजूद अजा त्यामी भाषा डेम छो ना ठो। बिजली की लोडशेडिंग छो खत्म ना है थी। 2018 ईस्वी में हुकूमत खत्म न थे हा तो मुल्क घनी तरक्की करे वे हा। गिलगित में चूंड जलसे के खिताब करे अगुणे वजीर आजम नवाज शरीफ चो तो कहते तनकीद करे या बुराई करे वोट वठन ना आयो। असाजी पार्टी का सवाए कें गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत कई है तो बुधा। बया मनसूबा अजा तक मुकम्मल ना थे।

0: के अंटर करारी छो। शाहबाज शरीफ चयो तो सनतुन की तरक्की से गड बरामदाद वधाइण हुकूमत की तरजीह है। सनती तरक्की जो मकसद आवाम की भलाई ए बेहतरी होजन घुर्जे। वजीर आजम पारा वजारतुन के माहिरन सा नतीजा डींदड़ मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासी

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

0: स्मेल जल्द आ रहा है।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।